जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय बजरंगी जय हनुमान करुणा सागर कृपा निधान जय बजरंगी जय हनुमान लाल अंगों ते लाल निशान जय बजरंगी बाबा हनुमान संकट